अजामल दा पिता सोचदा है अजामल वड्डा होवे, पढ़ लिख जावे ते मेरी जगह राजे दे दरबार विच ए भी कथा करया करे अते जिन्ना इज्जत मान मेरा है इस तू वध इज्जत मान इस नू मिले। अजामल कुछ वड्डा होया, अजामल दा पिता अजामल नू पढ़न वास्ते पाठशाला विच लै गया। पहले दिन अजामल पाठशाला पहुंचिया, अजामल नू पढ़ाण वाला गुरु अजकल ते अध्यापक कहंदे ने, मास्टर कहंदे ने, प्रोफेसर कहंदे ने, पर पहला लोग विद्या देण वाले नू गुरु कहा करदे सन ते पूरा मान इज्जत देंदे सन। अजामल दे गुरु ने कहा, अजामल जदू मेरे कोल पढ़न वास्ते आवे तां इक गल याद रखी, शहर दे बाहरों आना है, बाजार विचों लंघ के तू मेरे कोल पढ़न वास्ते नहीं आना। अजामल ने कहा, सत वचन। अजामल जदू पढ़न वास्ते जांदा है तां शहर दे बाहरों आंदा है, पढ़ाई करके वापस घर जान लगदा है ते तां वी शहर दे बाहरों। अजामल जदू तक गुरु दा कहना मनदा रहा, सारिया विद्यार्थियों नालों सियाणा, हुशियार, पढ़ाई विच तेज, शरीर भी चंगा, गुरु भी खुश, पिता भी खुश, अजामल भी खुश, पर ए खुशी बहुत ही दिन ना चली। एक दिन अजामल मन विच सोचदा है, ऐ मना सारी दुनिया शहर विच वसदी, पर मेनू गुरु ने क्यों रोके है कि अजामल शहर दे विचों लंघ के बाजार विच

जो गुरु कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो। जे गुरु रोकदा किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने घरों तैयारी की थी, घरों तुर पिया अजामल। शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा, कलावती नाम दे इक वेसवा हार शिंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देखिया, तुर गया। पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंचिया, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विचो निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी। ते कलावती नाम दी वेसवा ओ हाली भी बैठी है। उस वेसवा नु देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोई दा काम बन गया। वेसवावां दे बाजार विचो आना, वेसवावां दे बाजार विचो जाना। ते हौली हौली ए अजामल कलावती नाम दी वेसवा कोल जान लग पिया। ता मन जिहड़ा सी पढ़ाई वल्लों हट गया। शरीर भी हुण तंदुरुस्त ना रहा। पढ़ाई विच भी पिछे। गुरु नूं पता लग गया कि अजामल जिहड़ा है ए हुण पाप करन लग पिया। भाई गुरदास जी बयान करदे ने, पतत अजामल पाप कर जाए कलावतनी दे रहा।

पुत्र पैदा हो गए। अजामल करदा की है, जंगल विच चला जांदा है, जाल लगांदा है, पंछी पकड़दा है। कुछ पंछी मार के सब्जी बना लेंदे ने, कुछ पंछी वेच के आटा दाल ले आंदे, गुजारा करदे। जेड़े पुत्र पैदा हुए ओ भी माड़े कर्म करदे ने। अजामल दा शरीर रोगी हो गया, क्यों के गुरु साहिब जी बाणी विच कहंदे ने, दुख तदे जा विसर जावे। जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला देंदा है, परमेश्वर दा डर मन विचों कट देंदा है, फिर पाप करदा है। ते जिहड़ा पाप करन वाला है, अंत ओ इन्ना दुखी हो जांदा है कि पछताण दा मौका भी नहीं मिलदा। कई वारी अजामल शरीर रोगी हो गया, पुत्र भी पापी निकले। छे पुत जाए वेसवा, उस वेसवा ने छे पुत्रा नु जन्म दिता। पापा दे फल इच्छे लिया, पाप कीते सन ते पापा दा फल पाप ही मिलिया। अत दे दुखी हो गए ते हुण सोचदे ने, गुरु दा कहना नहीं मन्या, पिता दा कहना नहीं मन्या, ते आप भी दुखी ते औलाद भी, ओ भी पैड़ी।

जमदूत वेख पुत नारायण बोले शया। जमदूता नु देख के डर गया, पुत्र भुल गया, ते उची सारी कहंदा नारायण बचा। ते नारायण परमेश्वर दा नाम है, सच्चे मनो नारायण के है। जदों नारायण के है ते जिहड़े जमदूत सन ओ पिछे हट गए, क्योंकि हुक्म है जमदूता नु कि जिथे परमेश्वर दा नाम है उथे जमदूत नहीं जा सकते। जमदूत पिछा हट गए। ना होया कि जमगण मारे हरजणा गया सुरग।

अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया सानू इस अनमोल खजाने की पहचान हो जावे। वाहेगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी जपजी साहब की इतनी महानता गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है अपना रूप बख्शिया है एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम सतसंग जी जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई अपना रूप बख्शिया कुछ बचन भी कीते

कहिंदे उस वेले ब्यासा दरिया गोडे गोडे पानी हो गया। एदा वेरवा दिता भवजल गुर को शब्द उधारे ए बपरी क्या नदी ना तारे। भवजल तो तर जांदा ए बाणी सदका नदी नहीं तारेगी। तर शरदा गुर के बच मानो उतरे पार बिलम ने छानो। सतनाम गुरदास उचारा ए सूरज प्रकाश दियां पंक्तियां। प्रथम प्रवेश्यो नदी मझारा। प्रथम पहले आप अगे लगे आखो सतनाम। जानू लग जल पा सलता को। जानू लग जल पा सलता को। ओ सलता उस गल नू दरी नदी नू क्या के ए जल गोडे गोडे रह गया। संगत सगल देख कर ताको सतनाम को उचरो आछे। गमन कीन गुरदासे पाछे। कद लग जल किसके न आयो। कद लग किसे दे कहंदे लक तक भी गल नहीं जल नहीं आया। गोडियां तो ता नहीं जल वधिया। जपजी दी बाणी चल रही आखो सतनाम। कद लग जल किसके न आयो ते संगत सकल पार उतरायो। एक बारी गज के आखो सतनाम।

गुरु वाले बनो फिर जो मिले उपदेश। बाणी जार है बाणी पढ़ो पहली पौड़ी का पाठ। वाहेगुरु शब्द का जाप करो कोई हिंदू भाई है राम राम का जाप करे क्योंकि सारे धर्म चंगे हैं। धर्मां विच कोई कमजोरी नहीं, कमजोरी साडे विच है। आओ अपनियां कमजोरियां दूर करिए अपने धर्म ते रह के नित नेमी सिख।

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गर्भ गंभीरा शब्द गुरपीरा गर्भ गंभीरा

0: जित जाए बे मेरा सतगुरु।
1: अज दा दिन महान दिन है क्योंकि अज दे दिन दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी ते वाकई कमाल है गुरु अंगद देव जी दा महान सेवा है। गुरु नानक देव जी चरणा दे विच रह करके इन्नी सेवा कीती कि एक दिन गुरु नानक देव जी ने प्रसन्न हो करके ओ इलाही जोत जो गुरु नानक देव जी इस संसार दे विच ले करके आए सन ओ गुरु अंगद देव जी नूं दित्ती। परीक्षा भी बड़ी हुई ते हर कसौटी दे उत्ते गुरु अंगद देव जी पूरे उतरते रहे। एक दिन की छोटी जी साखी मैं आप जी के सामने रखन लगे। कुछ गल्लां इस तरह होंदियां हन कि कई बारी गुरु देखदा है मेरा सेवक किन्ना पक्का। वाकई पक्का है के कच्चा है हाले क्योंकि कसौटी दे उत्ते उसनु तोल रहे हैं। परमासी दा दीवान है। बड़ी ही संगता गुरु महाराज गुरु नानक देव दे चरणा दे विच पिंडा दे विचों शहरां दे विचों चल करके पुजिया हैं क्योंकि परमासी दा दीवान लगता है। बड़ा इकट्ठ होया होया बरसात लगी हुई है लंगर दा कोई प्रबंध नहीं हो सके। संगत दे विच हुण बच्चे भी हन जो कि भुक दे मारे बिलाप कर रहे हैं ते साथ संगत कई सेवादार ने जाकर के आख्या सच्चे पातशाह अज दो दिन हो गए लंगर दा तां कोई प्रबंध नहीं हो सकिया क्योंकि बरसात इन्नी पै रही है कि लंगर दा प्रबंध किस तरह किया जाए। बच्चे बेचारे भुके बिलाप कर रहे हन ते कुछ कृपा करो आप जी ते साथ संगत नाल बैठे हन गुरु नानक देव जी दे दो साहिबजादे बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास जी ते इन्हां नूं इशारा कीता सारी साध संगत बैठी हुई है कि जाओ ए जिहड़ा पेड़ है ना सामने इस दे उत्ते चढ़ करके हलूणा दे उस नूं हिलाओ इस दे विचों अनेक पदार्थ डिगणगे ते जदों ये पदार्थ डिगणगे संगत इस नूं छक करके संगतां दी तृप्ति हो जाएगी भोजन मिल जाएगा। ते साध संगत बाबा श्री चंद ने आख्या कि इस तरह भी कदे होंदा मैं पेड़ ते चढ़ करके हलूणा देवां ते पदार्थ डिगण ये तो हो ही नहीं सकता। पेड़ दे विच्चों किथे पदार्थ आए हन मैं नहीं चढ़दा साफ इनकार कर दिता। दूजा बचन होया बाबा लक्ष्मी दास जी दे नाल उन्हां नूं आख्या भई तुसी कृपा करो इस पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हिलाओ इस दे विच्चों अनेक पदार्थ डिगणगे जिस नूं छक करके संतां दी तृप्ति हो जाएगी। ते देखिया उन्होंने भी साफ इनकार कर दिता कहिंदे इह हो ही नहीं सकदा कि पेड़ दे विच्चों पदार्थ डिगण पेड़ दे विच्चों लंगर मिले लोकां नूं छकण वास्ते हो सकदा उन्होंने मना कर दिता। तीजे हन सेवादार उत्ते सेवा करदे हन भाई लैणा जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बहुत पक्के सेवादार हन। जदों इशारा कीता भाई लैणा जी तुसीं कृपा करो पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हलूणा दिओ ते साध संगत सत बचन कह करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। ये पुछा नहीं ये मन दे विच विचार ही नहीं किया कदे हो सकता कि पेड़ दे विचों पदार्थ डिगण ते संगतां दी छक्कर के तृप्ति हो जावे ये बचन ही नहीं किया ते सत बचन आ करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। हुक्म मनिए होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए से ते फिर कसवटी दे उत्ते पूरे उतरे साहबजादे बैठे रहे अनेक इहो जी परीक्षा लई ते साध संगत जो देखिया कि ए सेवक पूरा है पूरा नहीं है कच्चा नहीं है ए पूरा है ते साध संगत उस वेले ही गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी तो अंगद बना दिता। आओ अज उन्हां महान गुरु अंगद देव जी दा अवतार पुरब दिहाड़ा है, आप सारे मिल करके यह जो है तुक सारे मिल करके पढ़िए।

अंदर जाके सोता है। एडी गूढ़ी नींद आई है, ये एक बारी पासा भी नहीं पाई। निरंकार ने वडेरी अवस्था इको एक पुत जिता है और उसको कोई ना कोई रोग लगा ही रहता। कोई उसको चला कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई बावला कहता है। मैं चुप कर गया। मैं खामोश हो गया। लोकां दे बच्चे खेल दे हैं पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल। होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगते पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं। तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं छके, पता नहीं किड़ा रोग। अंदर जाके सोता है, तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया ही। जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके ता ममता दी मारी हुई मां माता तृप्ता ने भी मुंह च बुरकी नहीं पाई। जिस मां दा पुत भुखा सो जाए उस मां नू नींद नहीं दी। पुत सो गया है, मां जाके उठा दी, काका भुखा क्यों सो गया? एक बुरकी तो वो उच पाए। मां दी आंजरा ठर जाए, बच्चा रज के प्रसाद छक लवे, मां पहले रख ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत। माता तृप्त इना करना इन्हों विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर न पुत्र ही सुन। गुरु नानक एक और वेखण वाली वखो वक तृप्ता ने जाने सुत कालू ने जाने पुत लालू भतीजा जाने मूले जाने ए जवाई चंदो रानी जाने सरबंधी जय राम साला जाने हैं पर बेबे नानकी ने जाने हैं रब रूप मेरो भाई। श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर पराए बुलार को प्रतीत पड़ी आई है। श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक को जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई हटी। भावना सब तो वड्डी चीज़ जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मिल गया। विश्वास ही वड्डी चीज़, विश्वास ही सब तो वड्डी चीज़। असी कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मत्था भी टेक
ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਬਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ

भी ऐसा होना चाहिदा है। जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जाए। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साई फरमान करदे हन के ऐसा शाह इको इक परमात्मा है, जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे, ऐसे शाह बारे साई फरमान कर रहे हन।

हमारे आप परमेश्वर कहायो पाठ अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं लिखते ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगद्दी

भाई जेठा प्यार दे नाल घर वाले जेठा क्या करते सन। गुरु अमरदास जिन्हां ब्यासा दे किनारे गोविंदवाल शहर वसाया संगतां दे नाल भाई जेठा भी गोविंदवाल साहब आए सेवा करन लग पे। इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा के गुरु अमरदास जी ने अपनी सुपुत्री पानी दा व्याह भाई जेठा रामदास जी दे नाल कर दिता। गुरु घर दे सेवक ही रहे, जवाइयां वाली प्रौणियां वाली आकड़ नहीं दसती। समा बीतदा रहा, गुरु अमरदास जी दे दो जवाई सन, एक रामा जी एक गुरु रामदास। गुरुगद्दी देण दा समा आ रहा, पर गुरुगद्दी ए निजी जायदाद नहीं, इलाही दात है। एक दिन गुरु अमरदास ने रामा जी ते गुरु रामदास दोनों नु बुला के कहा, भाई दो थड़े बनाओ पर बहुत सोहने बनने चाहिए। सारा दिन ला के रामा जी अते गुरु रामदास ने बड़े सुंदर थड़े बनाए। शाम दे वेले गुरु अमरदास आए, थड़े देखे ते कहन लगे थड़े पसंद नहीं आए, ढा के दोबारा बनाओ। खड़े डा दे। दूसरे दिन फिर बड़ी मेहनत करके बड़े सुंदर खड़े बनाए। शाम गुरु अमरदास फिर आए, कहन लगे थड़े चंगे नहीं बने, ढा के फिर बनाओ। दूसरे दिन भी थड़े ढा के, तीसरे दिन फिर थड़े बनाए। तीसरे दिन गुरु अमरदास फिर आए ते कहन लगे थड़े अज भी ठीक नहीं बने, इन्हां नूं ढा के फिर बनाओ। तारामा जी खिज के कहन लगे, असां तां थड़े बड़े सुंदर बनाए बड़ी मेहनत दे नाल, पर आप जी नूं पसंद नहीं आंदे। आप जी दी उम्र वडेरी हो गई है, चंगी चीज भी चंगी नहीं लगती, मैं तो इस तो अच्छा होर नहीं बना सकता, यह कह के चले गए। ते जद गुरु अमरदास ने भाई जेठा रामदास नूं कहा, रामदास थड़ा तेरा भी ठीक नहीं बनया, टा के बनाओ। ता रामदास जी हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के कहन लगे, दाता साड़ी मत बड़ी थोड़ी है, साड़ी समझ बड़ी छोटी है, सच्चे पातशाह हुणे ढा देंदा ए थड़ा, आप जी जिस तरह हुक्म करो उसे तरह फिर थड़ा बनावांगा, क्योंकि सेवक का काम है हुक्म मनना, जिस तरह हुक्म करो सेवा करांगा। यह है हुक्म मनना, सेवा करनी, हुक्म मनिया सेवा कीती, गुरु की खुशी मिली। तो हुण गुरु ने कितनी कृपा कीती, रामदास नूं उस सिंघासन ते बैठा दिता जिथे आप बैठा करदे सन। परिक्रमा कीती, हुण रामदास दे चरणा ते आप मत्था टेकिया ते रामदास नूं गुरु रामदास बना दिता। सेवा सिमरन और हुक्म मनन दा ए फल मिलिया कि रामदास गुरु रामदास बन गए, जिन्हां ने अमृतसर साहब शहर वसाया,
ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ

मन विच हंकार नहीं आया। गुरु नानक साहब दे साहिबजादे बाबा श्री चंद गुरु रामदास जी नूं मिलन आए। गुरु रामदास जी का दाड़ा बड़ा लम्मा सी ते बाबा श्री चंद कहन लगे रामदास इन्ना लम्मा दाड़ा इन्नी लम्मी दाड़ी क्यों वधाई? होर कोई हुंदा उहदा जवाब कुछ होर हुंदा, पर गुरु रामदास का जवाब की सी? एक हथ दे नाल अपनी दाड़ी फड़ ली, एक हथ दे नाल बाबा श्री चंद के पैर फड़ ले। अपनी दाड़ी दे नाल बाबा श्री चंद जी दे पैर झाड़न लग पे गुरु रामदास। ते नाले कहंदे ने बाबा जी तुहाडे वर्गे महापुरुषां दे चरण झाड़न वास्ते ये दाड़ा वधाया होया। तां बाबा श्री चंद कहन लगे रामदास अगर ये निम्रता साडे विच हुंदी ते असी गुरु ना बन जांदे। पट कह रहे ने ऐसे गुरु किथे मिलनगे, इस वास्ते सारे दर छड के इन्हां दे दर आ पए आ। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो। हुण गुरु रामदास ने कृपा की। गुरु रामदास जी दे तीन सपुत्र सन, वड्डे बाबा पृथ्वी चंद, उन्हां तों छोटे महादेव ते तीसरे अर्जन देव, जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अर्जन साहब कह के याद करते। वड्डे दोनों पुत्र ना सेवा वाल ध्यान ना हुक्म मनन वाल, ते गुरु अर्जन साहब जो पिता गुरु ने कहा कहा कदी नहीं मोड़िया और आगे आ सेवा दा सदका ए गुरुगद्दी ए इलाही जोत। हुण गुरु रामदास पातशाह ने कृपा करके गुरु अर्जन साहब ने बख्श दिती। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बयन, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नयन। कि हुण पंजवी जोत गुरु अर्जन साहब गुरगद्दी ते बैठे ने, जेड़े प्रमाण पुरख ने, ते पाठ कहंदा है अगर दर्शन करने ने इन अखां दे नाल तां गुरु अर्जन दे करो, क्योंकि दर्शन कीते हैं जन्म मरन सौर जांदा है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी घटिए। इस बाणी इतिहास तो आप सिख्या लैनी, अपने गुरु का हुक्म मनना, सेवा करनी, सिमरन करना, अपने घर विच अपने मां बाप वड्डियां दा क्या मनना, उन्हां दा आदर करना, उन्हां दी आग्या विच चलना निहायत जरूरी है। क्योंकि कहंदे ने जिन्हें मां बाप की सेवा नहीं की थी, वो कितना भी दान पुन करे, वो कितना भी तीर्थां ते जावे, वो कदी सफल नहीं हुंदा। मां बाप की सेवा की थी, समझो।